0: हार्दिक निमंत्रण।
1: आयुर्वेद शिरोमणि परम श्रद्धेय आचार्य श्री बालकृष्ण महाराज को 54 शुभ जन्मोत्सव एवं जड़ीबुटी दिवस को अवसर में पतंजलि योग समिति सेंजा को आयोजना में वृहत रक्तदान तथा जड़ीबुटी वृक्षारोपण कार्यक्रम यही साउन 19 गते मंगलवार बिहान 8 बजे पतंजलि योगपीठ वालिङ में आयोजना गरिएको हुँदा वालिङ स्थित संपूर्ण संघ संस्था एवं नागरिक समाजलाई रक्तदान एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम में गरिमामय उपस्थिति का लागि सादर अनुरोध गर्दछौं।
0: कार्यक्रमहरू
1: रक्तदान कार्यक्रम
0: जड़ीबुटी वृक्षारोपण कार्यक्रम
1: आयुर्वेद र प्राकृतिक संरक्षण में हातेमालो गरौं स्वस्थ शरीर स्वच्छ समाज र हरियाली भविष्य निर्माण गरौं।
0: अनुरोध हक पतंजलि योग समिति सांगसा।
2: स्नातक तह भर्ना संबंधी राममणी बहुमुखी कैंपस को सूचना। रूपंदेही को मरिग्राम स्थित राममणी बहुमुखी कैंपस में स्नातक तह प्रथम वर्ष में शैक्षिक सत्र 2083-84 का लागि अंग्रेजी र नेपाली माध्यम में भर्ना खुल्यो। कार्यक्रमहरू बीबीएस बीएड र बीए भर्ना कार्यक्रम चलिरहेको छ। कक्षा संचालन साउन अंतिम सातादेखि। जेहेन्दार विद्यार्थीलाई नतिजाको आधारमा छात्रवृत्ति र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई छात्रवृत्तिमा थप सहुलियत दिएर पढ्न पाउने व्यवस्था गर्दै अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको क्याम्पस। सम्पर्क राममणी बहुमुखी क्याम्पस तिलोत्तमा 5 मरिग्राम रूपन्देही। फोन 071-560-226। बीबीएस भर्नाको लागि 98-570-42-624। बीए र बीएड को लागि 98-471-29-657।
3: सुन्नुहोस् न, अहिले हाम्रो गर्नेमा
1: इस समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूषाल पेट्रोल पंप नजिकै रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको 5 घरेता कुना को लाइन जैसी 15 जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
3: ठाउँ।

एस आधिक फ्लाक खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सैंगजा

नमस्कार नमस्कार नमस्कार यानी हार्दिक हार्दिक स्वागत कर शासमा सांगीतिक अभिवादन प्रक्रिया शौ कार्यक्रम गांधी भाका को इस सुंदर चौतारी दीवाकालीन समय कार्यक्रम गांधी भाका को पर्खाई में प्रतीक्षा में रहन् भाई तमाम तमाम लुगीत पारखी संगे रेडियो पारखी मन को पर्खाई को घड़ी मेटौन का सदैं का विषय में जैसे आज अपनी घड़ी ने दिवसो को एक बजाने बितीक यहां रेडियो सेट समक्ष उपस्थित भईसकू मरती

0: सुनिए ना, आइए हम लोग अनिमा 10 बजे तक छा
1: इस समय को साथ में जेतू सुनसादी पसल पुसाल पेट्रोल पंप नजिक डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़ पांच घरे कुना को लाइन जैसी 15 जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
2: नमस्ते महोत्सव के आफ्नै गायक तिलक बमल्ल तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ चांगर जिल्लाको पहिलो आवाज आदिखोलाको स्पन्दन सामुदायिक रेडियो आदिखोला 105.4।